बिंद के सधैयता हीज की बटैया देत बंदरा सदीव पाए न गई फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रभी ने एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे कह तरत है भूत बन चार छित छौना सब दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है त्रिण के भछैया धन लोभ के तजैयत तो गौवन के जय ब्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंच की बटैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है जेते बड ज्ञानी तिन्नो जानी पै बखानी नाहे ऐसा न प्रपंच मन भूल अनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कह नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कह आदिस फिरैया दत भूत कह पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भछैया सो चकोर सम मानी है सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को

नाथ गुजर गोपाल सब धिन चरि रिखि केस नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रख रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जट्टा थारी सत्य सचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसा।

लगन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विष्ण कित वेद और पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोनदी मदार कित्य अश्विनी कुमार कित्य अंशावतार कित्य काल बस भय है। पीरे और पिगंबर कित गाने न परत ते भूमि ही ते हो के फिर भूमि ही मिलाए है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सरद्रु जोधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। सिज देकर अनेक तोप जी कपट वेश पोष दी अनेक दारी बावत है। शीश को कहा भय मल्ल जो पे काढ़त अनेक दंड सो तो न दंड दया से डांग अथ तीस को कहा भयो रुकी जो पे डार्य रहे उर्द मुख मान तेना मुंडने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीन एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीश पट कत जाके कान में खजूरा धस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग को चरैया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीश वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीजे जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करियो करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न उजलीन भावना यकीन दीन कस के तरत है। जैसे एक स्वंगी कहूँ जो किया बरा की बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की घुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंड धारी हो के लोकन भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर शीतकाल कुंजर ओगतहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए जो पे पायत जाप देव पूदना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बुकरत है। आग में जरत गत राण की परत कर पत

ते कनु कगोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भछ, केते अच वछ हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नव बीज अच पछ को करेंगे भज, केते गब्रत अच हो बचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही जमाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज, जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत केते रोवत मरत, केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंग बासी केते मदीना मकानी वासी, के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केते भूम में गड़त, केते सुआ पे जड़त केते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केते जल में रहत, केते ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दान बटे बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घास हारे, चंदन लगाए हारे, चोजार बूज हारे, बाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे, मटी मट लीप हारे, भीतन लगाए हारे, छापसी गाय हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर साब पच हारे, पंडित

कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्वभूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सातकी तामसी हूं कहूं जोग विद्या धरे तापसी हूं कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हूं कहूं जच्छ विद्या धरे मारवी हूं कहूं राजसी हूं कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं।

बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतंग कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज।

जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं ब्योतबान, जय जात पात नहीं सत्र मित्र, जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय त्रास वास नहीं देह नास, जय आद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल ब्याल कट्यो न अंग, अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कतेव, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत, तन शीत खाम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन।

तीरथ तीरथ भर मत्सु भरम गई यगन होत्र कई देव करम गई गर्त वीर विद्या विचार नहित दबतास पायतन पार कहूं राज रीत कहूं जोग धर्म गये सिमृत सासरत उचरत सुकरम न्योली याद करम कहूं हस्त दान कहूं अश्वमेध मख को बखान कहूं गरत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं बिरद चार कहूं गरत जाछ गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ करम कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं गरत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक बग निराधार कई नेह देह कई गेह वाज कई ब्रह्मद देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्नि ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप।

रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भोयं जे खेत न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात पितं जेह रच्यं छत्री छत्र छितं जेह राग न रेख न रोग भणं जेह द्वैख न दाग न दोह गणं जेह अंडह ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड रचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रो बिंद न किंद नगं श्रेय जज गंधर्व पणिंद।

कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंगी ये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप है किन्नर जाछ जुवंग नर नारन पुंसक जाहे किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांद गणंग भव भूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जे रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास कियो।

नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदैव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदैव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पुत्र जानी है। नराग रंग रूप है, नरोग राग रेक है, अधोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म भेक है। न तात्मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अधेक से कभेक है, सदैव विश्ववरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्वभरण है, जिमी जमान के बिखे सदैव करम भरम है। अद्वेख है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदैव सर्व ठौर में विशेक अन मानिए। न जंत्र में, न तंत्र में, न मंत्र बस आवई, पुराण या कुरान नेत नेत कह बतावई। न कर्म में, न धर्म में, न भरम में बताइए, अगंज आदि देव है कहो सो कैसे पाइये। जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है, न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। न हान है, न बान है, समान रूप जानी है, मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानी है। न देह है, न गे है, न जात है, न पात है, न मंत्र है, न मित्र है, न तात है, न मात है। न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, न दोग है, न दाग है, न द्वैख है, न देह है। न सिंह है, न स्यार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संक है। न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है। न ने है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है। न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है। न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है। न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेद है। न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है। परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है। अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है। न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है। न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है। न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेद है, न द्वी है, न द्रोह है। न काल है, न बाल है, सदैव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है। अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत भेक है, बली रूप राग रंग है। न द्वैग है, न भेद है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है। बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम बीज है सदा, छिज तेज मानिए। न आद है, न ब्याद है, अगाध रूप लेखिए, अदोख है, अदाग है, अच्छे प्रताप पेखिए। न कर्म है, न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है। न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोकार है, न आद है, न गाद है, न ब्याद को विचार है। न रंग राग रूप है, न रूप रेख रार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा, सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्त पे विषेखी है, बेअंत व्यंत व्यंत को करंत पाठ पेखी है। अगाध आद देव की अनाद बात मानी है, न जात बात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानी है। सदैव सर्वलोक के

सन कौ सन केस नंदन पाव ही न सेव जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव शुक्र ओ मुखचार सर्व सबत बतार के तर जाप ही जह जाप आद देव गाद दे जा नाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठोर रहे हो बिराज धिराज राज प्रवीन जछ गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैस नंगे बिखे बिराज सूत्र भी वह नाहे गूढ़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूमा काश अनूप जाल जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के नाधीन सर्व सपत पतार के तर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूरन होत सोत सोत हटे सफय सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त हके महागम गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहो सभु मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो।

देव देव गंधर्व किन्नर माछ कछ अपार भूमा काज लेथले मेहमानिये जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ कर

वंशिष्ठ को भ्रष्ट है, कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है, कहाँ भ्रम को नाश। कहाँ चेतन की चेष्टा, कहाँ चेत प्रकाश दोहरा। कहाँ नेम संयम, कहाँ कहाँ ज्ञान ज्ञान। को रोगी सोगी कवन, कहाँ धर्म की हान दोहरा। को सूरा सुंदर।

अक्षय अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रमक बर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्टि उदंडन रूप तेजंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंसन महक मथे दान प्रहार।

असुर मर्दन भरम विनाशन धरम तुझे घुंगरू खमंगण शास्त्र झमंगण फणियर फुंकारण धरम तुझे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय ओसे मखासुर मर्दन आद कुमार गाद वृते सुर नर मुन बंदन।

संकटे निवारण धम उदाहरण तेज प्रकार खंड धुंध तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो श्री शस्त्र प्रकार खंड आद नील अगाध अभे चंचला जघंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अदम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन वृतन विमोचन सोच विसोचन कौज

जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, केसरी है नर है, विश्व को भरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पार वार हूं को पार, जग की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विधव पूर्वी न पार पावया सत्यानाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेवनाथ अद्वै अविनाशी है, अंजन विहीन है।

राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ जोग है धरई अधर्म छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के गोल के हंसनी सिसी हारो मही रसी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सोरसी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी गोल्ड चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी गलाज कमाऊ गढ़ कांसी पूर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा ने रहंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार मकान सी बिलंदवाद कीरत तिहारी के उजियारी मोह सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भकरी कंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराजे।

परिवार, भय भी सूरज भय भी चंद, कह करोड़ी चलत न अंत। भय भी सिद्ध बुद्ध सुरनाद, भय भी जे आडाने आका, भय भी जोत महाबल सूर, भय भी जे आवे जावे पूर। सगलिया पौल किया सिर लेख, नानक निर्भव निरंकार सच एक महर।

मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूर अखी सूतक वेखना प्रतिया प्रधन रू कन्नी तुम्हें